0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Yes.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

Freaker.

कभी अनुभव करते हो? बेफिक्र जीवन अगर है तो सदा मस्तक में दिव्य ज्योति चमकती रहती और जीवन

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कुछ भी हो, बाप साथ है, पहुंचने की क्या बात, कंफ्यूज होने की क्या बात, बाप का साथ का सहयोग लो। अकेले समझते हो ना तो मौज के बजाय मोच जाते, हम मोचना नहीं, ठीक है ना, अभी भी मोचेंगे नहीं मोचेंगे क्या, अभी नहीं मोच रहे है सिद्धि, अभी मौज में हो, इसलिए कुछ भी हो जाए लेकिन मौज नहीं जाए, ठीक है ना, कि मौज चली जाएंगी, मौज नहीं जानी चाहिए, सेवा का बल है तो उस बल को कार्य में लगाओ, सिर्फ सेवा नहीं करो लेकिन सेवा का बल जो बाप से मिलता है उसको काम में लगा, सिर्फ सेवा कर रहे हैं सेवा कर रहे हैं तो थक जाते हो, मोच भी जाते हो, लेकिन बाप के साथ का अनुभव जहाँ बाप है वहाँ मौज ही मौज, उस साथ को इमर्ज करो, सुनाया ना, याद करते हो लेकिन साथ को चूज नहीं करते, इसीलिए मौज जाते, संगम युग मौजों का युग है या मोचने का युग है, क्या है मौज का है, फिर मोचते क्यों, अभी अपने जीवन के डिक्शनरी से मोचना शब्द निकाल लो, निकाल लिया पक्का कि थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, एकदम मिटा दो, परमात्मा के बच्चे और मौज में नहीं रहे तो और कौन रहेगा, और कोई है क्या, नहीं तो सदा मौज ही मौज, सभी अपने ड्यूटी पर खुश हो, कि थोड़ा किटकिट है ड्यूटी में, नहीं कुछ भी हो ये पेपर पास करना है, बात नहीं है पेपर, पेपर पास करने में खुशी होती है ना, क्लास आगे बढ़ती है ना, तो बात हो गई, समस्या आ गई, ये नहीं सोचो पेपर आया पास हुआ मौज मना, जब बच्चे पेपर पास करके आते हैं कितने मौज में होते हैं, पूछते हैं क्या ये पेपर तो आएंगे, पेपर ही अनुभव में आगे बढ़ाते, इसलिए सदा मौज में रहते, सेवादारी नहीं लेकिन मौज में रहने वाले। सदा ये अपना टाइटल याद करो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

are some.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: क्या करेंगे?

रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: छोटा छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन उसके लिए

Coba cerita.

0: चारों ओर भी परिवर्तन में सहयोगी बनने में दोनों बात।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: टीचर को क्या चाहिए? सेंट्रल अच्छा हो, कपड़े भले कैसे भी हो, लेकिन सेंट्रल थोड़ा रहने लायक तो अच्छा। और जो साथी है वो अच्छे हो, स्टूडेंट अच्छे हो, पापा की पन्नाड़ी अच्छी हो, अगर अच्छा स्टूडेंट चेंज हो जाए तो दिल रखती है थोड़ी। फिर समझती है कि क्या करें, ये मदद करता ना, अभी वो चला गया, मदद कर चिंगिया सूता वापा पे, तो उस समय कौन दिखाई देते चिंगिया सूया बाप।
2: संकल्प पाना
1: पर आ गई, या आपकी कोई भी विशेषता के कारण योग नहीं है, अवस्था इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपके बोल में, कैचिंग पावर में विशेषता है, तो जिसके कैचिंग पावर और वाणी में किसमें मिठास होता है और किसमें स्पष्टता होती है, बोलेंगे एक बात आप भी बोलेंगे, ये भी बोलेंगे, लेकिन योग की बात जोड़ो, सिर्फ बोल में भी किसमें मिठास होता है, किसमें स्पष्टता होती है, किसमें कैचिंग पावर होती है, तो यहाँ के वहाँ की मिसाल वगैरह कैच करके सुनाती है, तो इसीलिए उनका नाम भी हो जाता है, कौन चाहिए फलानी चाहिए, कोना भी फलानी है, चाहे योग में भले कच्ची भी हो, लेकिन इस पर नंबर फाइनल नहीं होने, जो फाइनल नंबर मिलेंगे वो ये नहीं दियोंगा कि इसने कितने भाषण किए या इसने कितने स्टूडेंट बनाए, सेंटर बनाए, योग्य कितनों को बनाए, सेंटर बनाना बड़ी बात नहीं, लेकिन आत्माओं को योग्य कितनों को बनाए, नाम हो गया दी सेंटर की इंचार्ज और तीस में से पंद्रह हिल रही है, पंद्रह ठीक है, तो क्या हुआ, फायदा क्या, सिर्फ यह नाम हुआ, सिर्फ नाम होता है कि फलानी के तीस सेवा केंद्र, लेकिन नंबर इसे नहीं मिले, फाइनल नंबर जितनों को सुख दिया, जितना स्वयं शक्ति रही उसी प्रमाण मिलेंगे, इसीलिए ये भी चाहिए चाहिए कदम कर, नहीं तो योग नहीं लगेगा, रोज ही देखते रहेंगे कि फलानी जगह हुआ मेरे को फिर भी नहीं मिला, अभी देखो परसों यहाँ हुआ, कल वहाँ हुआ, आज यहाँ हुआ, तो योग लगेगा या गिनती होती रहेंगी, तो मुख्य बात है निश्चय को, जो यथार्थ निश्चय है उसको पक्का करो, कहने में सर्वशक्तिवान है, लेकिन प्रैक्टिकल में कर्म में टाइम पर आना चाहिए।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

Yes.

Tschüss.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: भगवान के बच्चे अगर सदा खुश नहीं रहेंगे कौन रहेंगे? आप ही हो ना, चेहरा कभी भी चिंता वाला नहीं, शुभ चिंतक। जब चिंता आवे ना किसी भी प्रकार की, तो पाप मेरे कंबाइंड है, चिंता पाप को दे दो, शुभ चिंतक आप बन जाओ। क्यों का पाप दादा सदा हर्षित रहते हैं ना, तो बच्चे मुरझाए हुए किसके बच्चे? भगवान के। चेहरा कभी भी चाहे बाहर आ जाए, लेकिन बाहर को भी आप रुई बना सकते। साथ अपने को जोड़ लो तो क्या हो जाएगा? जो बाहर है वो रुई हो जाए, क्योंकि सर्वशक्तिमान को साथ कर दिया ना। आप भले कमजोर हो लेकिन सर्वशक्तिमान आपके कंबाइंड है, समय में काम में लगाओ, कहने तक नहीं काम में लगाओ, तो सदा खुश नेमा चेहरा और दिल सदा खुश नसीब। बाप दादा चैलेंज करे कि अगर खुश नसीब खुश नेमा चेहरा देखना हो तो भगवान के सेंटरों पर देखो, करे चैलेंज।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

असंतुष्ट का प्रभाव कुछ तो पड़ता है ना। व्यर्थ संकल्प तो चल

अपने आप को इस मंत्र में स्मृति स्वरूप रखो तो आपके व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। अपने को जानते हुए भी कि ये ऐसा है, ये वैसा है, लेकिन अपने को सदा न्यारा, उसके वाइब्रेशन से न्यारा और पाप का प्यारा, अगर उस

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

programa na red.

उसी स्मृति में चलते हैं। आप सभी अनुभव से

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अभी फिर भी बाप दादा पहले से ही अटेंशन खिंचवा रहे हैं। कि अभी फिर भी
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सेज को स्वयं भी मुश्किल बनाते, मुश्किल है नहीं, मुश्किल बनाते। जब बाप कहते हैं जो भी बोझ लगता है वो बोझ बाप को दे दो, देना नहीं आता, बोझ उठाते भी हो फिर थक भी जाते हो, फिर बाप को लेना भी देते हो, क्या करें कैसे करें। अपने ऊपर बोझ उठाते क्यों, बाप ऑफर कर रहा है अपना सब बोझ बाप के हवाले कर लो, तीसरा जन्म बोझ उठाने की आदत पड़ी हुई है ना, तो आदत से मजबूर हो जाते, इसलिए मेहनत करनी पड़ती, कभी सहज कभी मुश्किल। या तो कोई भी कार्य सहज होता है या मुश्किल होता है, कभी सहज कभी मुश्किल क्यों, कोई कारण होगा ना, कारण है आदत से मजबूर हो जाते। और बाप दादा को बच्चों की मेहनत करना ये सबसे बड़ी बात लगती, अच्छी नहीं लगती। मास्टर सर्वशक्तिमान और मुश्किल, टाइटल क्या देते हो अपने को, मुश्किल योगी या सहज योगी, नहीं तो अपना टाइटल चेंज करो, हम सहज योगी नहीं है, कभी सहज योगी है कभी मुश्किल योगी। और योग है क्या, याद करना है ना बस ना, और पावरफुल योग के सामने मुश्किल हो ही नहीं सकता। योग लगन की अग्न, अग्न कितना भी मुश्किल चीज को भी परिवर्तन कर देती, लोहा भी बोल्ट बन जाता है। ये लखन की अगन क्या मुश्किल को सहज नहीं कर सकते। कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, बाबा क्या करे, वायुमंडल ऐसा है, साथी ऐसा है, हंस पगले है, क्या करे, पुरानी हिसाब किताब है, बातें बहुत अच्छी अच्छी कहते। बाप पूछते हैं आप ब्राह्मणों ने कौन सा टीका उठाया, टीका उठाया, कोई टीका लगा उठा है, देखा तो उठा है, विश्व परिवर्तन करेंगे, तो जो विश्व परिवर्तन

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: धन तो सबके पुराने है, चाहे जवान रहे चाहे छोटी और बड़ों से भी कांका कमजोर, चाहे बीमारी पड़ी लेकिन बीमारी की महसूसता कि मैं कमजोर हूं, मैं बीमार हूं, ये बीमारी को बढ़ा देती क्यों?

20%.

कल अपने लाना चाहिए। मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। और क्या होता है ये पार्ट पक्का हो जाता है ना, मैं बीमार हूँ तो कभी कभी होते नहीं है, मानो कमर में दर्द है, मेजॉरिटी को होते एक टांग दर्द, एक कमर का दर्द, तो कभी

0: अन्न में खुशी नहीं है ना, तो बहाना करेंगे मेरे को कमर दर्द।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ब्रह्मा बाप ने हर बच्चे प्रेत चाहे जानते थे और कल्याण की भावना रखें।

0: Remor Galeanki. Tristice. Onke misayogi.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप लोगों ने 14 वर्ष में योग तपस्या की ना, तो विघ्न कितने आए और आपको कुछ हुआ तो बाप दादा छत्र छाया बनाता, कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई, सारी दुनिया मुखी देता है, गुरु लोग सब एंटी हो गए। एक ब्रह्मा कुमार यहाँ अटल रहे, तो प्रैक्टिकल में बेघरी लाइफ भी देखी, तपस्या के समय बिना मिलना विघ्न भी देखे, बंदूक भी आई तो तलवारें भी आई, सब आया, लेकिन छत्र छाया रही था रही ना, कोई नुकसान हुआ दुनिया वाले हंगामे में डर करके सब छोड़ करके भाग गए। जब पाकिस्तान हुआ तो क्या हुआ, सब भाग गए और आपका टेनिस कोर्ट पर गया समाज, पर गया सब, सभी डर के मारे जो अच्छी चीज लगती थी ना वो छोड़े कैसे, प्यार होता है ना उसे, तो जो सिंधी लोग एंटी थे आपने जो उस समय एंटी थे वो गाली भी देते थे और सामान भी दिया, जो बढ़िया बढ़िया चीज थी ना वो हाथ जोड़ करके देखे गए, तो आप यूज करो और दुनिया वालों को हंगामा था और ब्रह्मा कुमारियों के लिए 5 रुपए में सारा बैल गाड़ी सब्जियों की थी, 5 रुपए में सब्जियां कितने मजे से सब्जियां।

0: noi. Chatre Jaya Pan. Kitna safety se stop na ka kare kiya.
1: Sunte rahiye Shiva Radio. यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सिर्फ एक बात याद रखना, ऐसे नहीं हो कि सेवा और सो उन्नति में बैलेंस में अंतर नहीं है। प्लान प्रैक्टिकल में करने के बाद ना तो सर्विस में बिजी हो गए ना, इसीलिए स्वोन्नति में अंतर आ गया, ये नहीं कहना। दोनों का बैलेंस सदा रहना। क्यों दूसरों की सेवा करो और स्व की सेवा नहीं, ये अच्छा नहीं। दोनों का बैलेंस रखना ही सफलता है। समझा?
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: तो आज के दिन फरश को विदाई देते हुए इन संस्कारों को भी विदाई दे सकते।

सकते हो, हाथ उठाओ, देनी पड़ेगी। हाथ उठाना तो बहुत सहज है, लेकिन मन का हाथ उठाना उठा रही है, पुराने संस्कार को

उन सभी बच्चों को चाहे या सन्मुख बैठे हैं चाहे दूर बैठे हैं।

すっ

0: wie man mit Tanz gerät. बोलो हाँ जी।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

So

件surori kyo agar swapen jen nahi hai

Samantha, digo.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: जैसे परिवार में होते हैं ना, बड़े बच्चों से प्यार कम हो जाते हैं और पोतरे दोतरों से प्यार ज्यादा होते हैं। तो क्रोध पाप है और रोब और नशा उल्टा नशा। नशे भी भिन्न भिन्न होते हैं,
4: पन्नो

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा, देखते हैं पुरुषार्थ बहुत तरीके से करते हैं, अटेंशन भी देते हैं, एकदम ऐसे अलबेले भी नहीं है, लेकिन समय अचानक आता है, कोई भी

इसलिए बाप दादा भी जनरल

0: सोचते हैं हर बच्चे को कहते हैं अटेंशन प्लीज। हर सब्जेक्ट में कम से कम पास मार्क्स तो होना चाहिए। नंबर थोड़ा सा पीछे है वो बात अलग है, लेकिन अटेंशन है, परिवर्तन भी है, ये चीज कर अलबेलापन तो नहीं आता। हो जाएंगे ये क्या बड़ी बात है। इसको कहते हैं अटेंशन में अलबेलापन। तो बाप दादा हर बच्चे के पुरुषार्थ में मेजॉरिटी खुश भी है, लेकिन बीच बीच में माया भी अपना चांस ले लेती। तो बाप दादा मुबारक भी देते हैं, लेकिन साथ में अटेंशन का अर्थ है नो टेंशन। किसी भी प्रकार का, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में अटेंशन पूरा हो। ऐसे नहीं सोचे ये तो थोड़ा बहुत चल जाएगा। कभी एक नंबर की कमी से भी बहुत नुकसान हो जाता है। इसलिए बाप दादा एक बच्चे को भी साधारण पुरुषार्थ में भी देखना नहीं चाहिए।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कई बार कहते हैं बाबा, आज वो चैन बाबा भूल गए। बाप दादा सुन के कितना आश्चर्य लगता होगा, भूल गए। तेसठ जन्म भूले, अभी भी भूल गए। एक जन्म और छोटा सा जन्म, 21 फुल जन्म भूल गए, अभी भी भूलना रहा हुए। इसीलिए अभी माया की चतुराई को समझ जाओ। माया को कभी कभी खातरे भी कर देते, कहते हैं हम समय पर हो जाएंगे। अभी तो टाइम पड़ा है ना थोड़ा, अभी टॉयलेट का बोर्ड नहीं लगा है ना, हम हो जाएंगे। और माया भी सहारा देख करके खातरी चाय पानी पीती रहती। माया के फॉलो फादर की बजाय फॉलो माया कर लेते। पुरुषार्थ ये ना संपूर्ण थोड़े बने हैं, ये तो होता ही है ना। ये माया कोई फॉलोअर बनना, तो अभी बाप दादा कभी भी बाप दादा चक्कर लगाने आते तो सदा शिकल देखे, तो कैसी शिकल देखे। कभी कभी शिकल अच्छी नहीं होती, सोच में सोच बहुत करते, क्या करूं, ये करूं, नहीं करूं, फायदा होगा, ठीक होगा, सोचते बहुत। बाप को फॉलो करो, ब्रह्मा बाप पहुंच गया ना, ज्यादा सोचते क्यों, सिर्फ फॉलो फादर। व्यर्थ संकल्प आते हैं, लहर आ जाती है, तो बैठ जाओ। फॉरेनर्स को नहीं सुना रहे हैं, सबको सुना रहे हैं।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अगर कोई नैन अंदर में समझे, हाथ उठाने में शर्म आवे, तो भी अगर कोई विघ्न है या कोई अड़चन है, तो अपने दादियों को या जिसमें भी आपका फेत हो, बड़े दादी या दादियों में, उनको सुना देना, रखना नहीं अंदर, कोई न कोई इलाज ले लेना। क्यों को होना है तो अचानक होगा, उस समय पुरुषार्थ कर नहीं सकेंगे। अभी चेक करो, कुछ भी अचानक हो जाए, हलचल हो जाए, तो इतनी शक्ति है जो स्वयं को बचाए, वायुमंडल में ये प्रभाव डाले और के भी मददगार बने। ये चेक करना, समझाना सभी ने, समझा
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Oh,

ಅಶ್ವಕಲ್ಯಾಣಿ.

Yeah.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

course.

el Quilme. Corazón.

Nossa!

Sí.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

见。

خوش.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Louise.

beneath.

長が इस बात के ऊपर अच्छा ध्यान है, क्योंकि अभी आपने भी

0: होशियार रहती बच्चों को पहुंचेगा।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सेवा के अनुभवी बोला

0: चाय कर बना, चाय समझ संपर्क हर कर्म में सेवा नेचुरल होती रहे। इसको कहा जाता
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: से भी प्यार कैसा भी है।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सब दादियों को देखे खुश होते हैं, क्योंकि दादियों ने निस्वार्थ सेवा की है। का झुंड सृष्टि पर आ गया है हमको उठाने के लिए। एक दो को देखो ये फरिश्ते स्वरूप में, ये फलाना है, ये फलाना है, नहीं फरिश्ता है। ठीक है दादियों से ये सीखो, शुभ भावना शुभ कामना तो स्टॉक है आपके पास, लेकिन देने में ताता कम बनते हो। नेगेटिव न देखो न सुनो न बोलो न सोचो, और मांगो उत्साह के पंखों से उड़ते रहो और उड़ाते रहो। अच्छा है ना दादियाँ स्टेज पर आती है, सबके चेहरे मुस्कुराने लगे थे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: में बाप दादा हर एक बच्चे में ये परिवर्तन देखने जाते हो सकता है, हो सकता है। हाथ उठाओ, हाथ उठाने में तो ठीक। तो क्या करना? अच्छे बाप दादा मुबारक देते हैं, एक दो को अटेंशन दिलाते रहना। क्या करना? रोज रात को सोने के पहले बाप दादा को गुड नाइट करने के पहले अपने सारे दिन का पोता मेल देना। अच्छा किया या बुरा किया, जो भी किया वो पोता मेल देके और अपने पोती को खाली करके गुड नाइट करना, बाप से भी और बाप की याद में आप भी सो जाना। आपकी नींद बहुत अच्छी हो। पहले खाली करना अपने को, बुद्धि में कोई बात नहीं रखना, तो आपको बाप के रूप में सारा पोता मेल सच्ची दिल का दे दिया तो धर्मराजपुरी में जाने की आवश्यकता।

0: वर्क मिला।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा के पास कोई कोई जाए छोटा सा नेकलेस बना के लाओ, जाए कंगन बना के लाओ, जाए बड़ा हार बना के लाओ, लेकिन लाना जरूर, हाथ खाली नहीं आना है ना, हिम्मत बनाएंगे ना। बाप दादा तो कह रही चलो
2: Structure.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने रिजल्ट देखी सभी के कर्मों के गति को चेक किया, पुरुषार्थ के गति को चेक किया, खजाने जमा का खाता चेक किया, तो रिजल्ट में क्या देखा? जमा करने का पुरुषार्थ बहुत अच्छा करते, लेकिन जो जमा करते हो उसमें परसेंटेज भिन्न भिन्न है, जितना सोचते हो जमा किया होता है जमा, लेकिन परसेंटेज थोड़ा जमा होता है, सदा के लिए जमा नहीं, जितना करते हो उतना सदा के लिए जमा में फर्क है। इसलिए बाप दादा अबे एक एक बात पर दृढ़ संकल्प कराते, क्रोध पर कराया लेकिन मन से भी किसके प्रेत हलचल नहीं हो, क्यों क्या नहीं हो, मुख से कंट्रोल किया है, कोई कोई ने अच्छा किया, लेकिन मन से थोड़ा थोड़ा चलता है, मिटाने की कोशिश कर रही, फिर भी बाप दादा खुश है कि अटेंशन गया, समझने लगे है किस में मेरे कोई नुकसान है, समझा।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज बाप दादा ने देखा अमृत वेले चक्कर लगाया, चारों ओर का चक्कर लगाए, चाहे विदेश चाहे देश, बाप दादा को चक्कर लगाने में समय नहीं लगता। तो क्या देखा? कोई थे क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति अनुभव की है, अनुभवी स्वरूप, सर्वशक्तियों के अनुभवी स्वरूप। Master knowledgeful, Master sarvashakti swarup, to anubhavi swarup banne mein kuch kami dikhai. Bad day, my dad.

tristeza.

इस समय की बुशारत को

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आजकल दुनिया वाले तो स्पष्ट कहती है कि आजकल सच्ची लोगों का चलना ही मुश्किल है, झूठ बोलना ही पड़ेगा। लेकिन कई समय पर कई परिस्थितियों में ब्राह्मण आत्माएं भी मुख से नहीं बोलती, लेकिन अंदर समझती है कि कहां कहां तो झूठ नहीं कहते उसको, लेकिन कहते हैं, समझती है कि यात्रा से चलना पड़ता है। तो यात्रा क्या है? ये तो करना ही पड़ता है। तो वो स्पष्ट बोलती है और ब्राह्मण रायल भाषा में कहती है, मेरा भाव नहीं था, न भावना थी न भाव था, लेकिन करना ही पड़ता है, चलना ही पड़ता है। लेकिन ब्रह्मा नीचे आवे तो पता पड़े लेकिन ब्रह्मा बाप तो साकार स्वरूप लेकिन वो हार नहीं है। उस समय के लिए हार लगती है लेकिन है सदा की विजय। सत्यता के पीछे अगर सहन भी करना पड़ता तो वो सहन नहीं है, लेकिन बाहर से लगता है कि हम सहन कर रहे हैं, लेकिन आपके खाते में वो सहन शक्ति के रूप में जमा होता। से ऐसे समझेंगे हम बहुत अच्छे जाते, हम कुछ चलने की चतुराई आ गई, लेकिन अगर अपना खाता देखेंगे तो जमा का खाता बहुत कम होगा। इसलिए चतुराई से नहीं चलो, एक तो को देख करके भी काफी करती है, ऐसे चलती है ना, तो उसका नाम बहुत अच्छा हो गया, ये बहुत आगे हो गई है। और हम सच्चे चलते हैं ना तो हम पीछे के पीछे रह गए, लेकिन पीछे रहना नहीं है, वो आगे बढ़ना है। पाप के आगे आगे बढ़ते हो और दूसरों के आगे, चाहे दिखाई भी दो लेकिन काम किससे है, पाप से या आत्माओं से? किसे काम है? पाप से है। तो पाप के दिल में अर्थात सारी कलप के प्रारब्ध में आगे बढ़ना, और अगर यहां आत्माओं को काफी करते हो आगे बढ़ने में, वो उस समय के लिए आपका नाम होता है, शान मिलता है। भाषण करने वाले लिस्ट में आते हो, सेंटर संभालने के लिस्ट में आते हो, लेकिन इस समय तक सारे कलम की प्रारंभ जिसको बाप दादा कहते हैं। के लिए काफी नहीं करूं। यहां नाम नहीं है लेकिन बाप के दिल में नंबर आगे ना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अगर कोई भी बच्चे थोड़ा भी नीचे ऊपर होते हैं, अचल से अलचल में आते हैं, उसका कारण सिर्फ तीन बातें मुख्य है। वही तीन बातें बिना समस्या या परिस्थिति बन के आती। वो तीन बातें क्या है? अशुभ व व्यर्थ सोचना, अशुभ व व्यर्थ बोलना और अशुभ व व्यर्थ करना। सोचना, बोलना और करना अभी विक्रम कम होती है लेकिन कम। Time waste.

सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अचानक तब

0: मूरत मूरत एक एक बॉल बाप को पड़ता किया करे हो जाना तो है हो नहीं है अभी सिर्फ निमित्त।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो सत्यम शिवम सुंदरम।

చీకన్నా, ఆజ్ సారే దిన్ మే కోయి భీ

Extra.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अभी समय परमान सब अचानक होना है, पता के नहीं होना है। जैसे अभी प्रकृति का अचानक
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कि वर्तमान समय आप बच्चों की विश्व को ये सेवा आवश्यकता है जो चेहरी से नैनों से दो शब्द से हर आत्मा की दुख को खुशी दे दो। आपको देखते ही खुश हो, इसलिए खुश ने माँ चेरी या खुश ने माँ मोरत सदा रहे, क्योंकि मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई देती। कितना भी कोई समझते हैं

परिवर्तन कर ले। आज मन्ना की खुशी के लिए कितना खर्चा करते हैं, कितने मनोरंजन के नए नए साधन बनाते हैं, वो है अल्पकाल के साधन। और आपकी है सदाकाल की सच्ची साधना। तो साधना उन आत्माओं को परिवर्तन

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जब भी बाप को टाइम मिलता है तो क्या दिल में होता है, मेरे बच्चे लाडले बच्चे, अब बच्चों को टाइम मिलता तो मेरा बाबा ऐसे है ना, ऐसे है, हाथ उठाओ। अच्छा, बोलने की चीज ही नहीं है, कितना भी बोलने की कोशिश करो लेकिन बोलते हुए बोल नहीं सकता।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: Stop.

0: Máscara. Menderakar Atma. Issakar. Karma Indriyon ke Aadhar se. Karam.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: शोर इकट्ठा इसीलिए किया जाता है कि एक दो के नजदीक होने के कारण एक दो को सहयोग देना सहज हो जाता है। तो ये भी सहयोगी बनना मेरी एरिया नहीं, सब मेरी आवश्यकता जहाँ है वो मेरा, चाहे सोन नाम अलग अलग है लेकिन जहाँ आवश्यकता है, आवश्यकता के समय सहयोग देना ये महापुण्य है। अगर अपना पुण्य का खाता जमा करना है तो सहयोगी बनो और सेवा को और चांद लगाओ, ये बाप दादा को अचल। तो इस संगठन को बढ़ाते रहना, बढ़ाते रहेंगे ना, हाथ उठाओ, बढ़ाएंगे ना, सभी सभी ने उठाया, हम सब एक है। ये तो सेवा के कारण कोई देख रेख हो सके इसके कारण जोन बने, बाकी एक ही है, एक ही रहेंगे, एक के है, एक के।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Прости.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बहुत बड़ा ग्रुप हो गया है ट्रांस पार्टी। अगर नाम निकालो तो बहुत है। वतन में आज
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अश्वगंधा खांसी के लिए है।

0: अब दादी गए थे उसी बगीचे में, दादी 3 दिन रहे उसी कारण से, और उसी टाइम में दादी ने इन लोगों को दृष्टि ज्ञान दिया था। अभी पक्का हो गया,
1: भूल जाए दादी गई थी इन लोगों की उसमें, तो ये दोनों उस टाइम निकले हैं, ये दोनों युगल पर प्रसाद रेड्डी।
2: ये तो कल पहले इनका भाग्य रहा हुआ था, कल पहले वाला भाग्य आपने अपना ले लिया। अच्छे अभी अहमदाबाद को ऐसा बनाओ जो बाप दाबा दृष्टांत देवे कि VIP सर्विस अगर देखना हो हैदराबाद में दे।
3: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: हर एक वर्गीकरण से ऐसे कोई स्पीकर तैयार हो, आप टॉपिक देते हो, उस पर भाषण करते हैं, नहीं खुद हो मंगावे। मुझे ये करना है, ऐसा कुछ प्लान बना।

ist Kabarbau. Feuermandel Mefel. Fest. Sick.

0: विस्तार से शार्ट कर दे। मनसा शक्तिशाली सेवा को बनाओ, जैसे शिकारी जो होशियार होते हैं वो ऐसा तीर लगाते जो पक्षी तीर सहता के पाँव में पड़ता। या मनसा सेवा ऐसी पावरफुल हो जो आत्माओं को प्राप्ति की अनुभूति हो, रह नहीं सके। मनसा शक्तिशाली से मनसा सेवा की सिद्धि प्राप्त होनी है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: योगी है ना, तो ये दिन में

0: sugat. Bab dada. Charo orki. Pachuku tere.
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: डबल विदेशी। परसेंटेज के बिना फुल बन गए तो बाप दादा चाहे भारत वाले भी अगर फुल पास हुए तो ब्रह्मा बाबा पता है क्या करेगा, क्या करेगा? बस रफ शाबाश दे देगा और क्या करेगा? क्या करेगा? रोज साथ साथ अमृत तो बाकी मिलेंगे और सारा दिन क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? जैसे चित्रों में
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सभी बच्चों को

delicious.

städerna. Nej, vad det smäck.

Laken. Jo bich mein. Koi na koi. Circumstance. इस वर्ष में संतुष्टता की शक्ति विशेष कार्य में लगन check.

Oh, strong.

क्या अगर एक ने ठोकर खाई तो उसको देखकर आप अलग मन में आके ठोकर खाते हो ये समझदारी है समझदारी ये बहुत बहुत बहुत अलबेले बन का पश्चाताप अभी बड़ी बात नहीं लगती है। हाँ चलो लेकिन बाप दादा सब देख रहे हैं कितनी अलग बेटी होती है कितने और उनको नीचे जाने में फॉलो करते तो इंसान बाप दादा को बहुत रहम आता है। के पश्चाताप की कड़ियां कितनी कठिन हो इसलिए अल्लाह पहले बन की लहर को दूसरों को देखने की लहर को इस सब पुराने वर्ष मन से विदय दो जब तोरा उमंग उत्साह है ना तो थोड़े समय

Cambiando mi la panela. Samsung.

0: समझ लिया, सोच लिया, तुम बाप दादा पढ़ाई पूरी कर देते। जब स्टूडेंट बन चुके हैं तो फिर तुम पढ़ाई पढ़े, फिर तो समाप्त कर दे। लेकिन इस अलग पहले पर को अच्छी तरह से विदाई दो और उनको नहीं दे, बाप को देखो, ब्रह्मा बाप को देखो। अगर कोई ठोकर खाता है तो मारती का काम है ठोकर से बचाना, नक खुद वालों।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: ये आवाज सुनाई नहीं देता, लेकिन पापा को सभी का आवाज पहुंच रहा है। बाप दादा भी रेस्पान में कह रही है, वाह बच्चे वाह, हर एक के दिल में कौन सभी क्या कह रहे मेरा बाबा, ये गीत तो सुना है ना बाप बच्चों का। बाप कहते हैं मेरा बच्चा, हर बच्चा कहती है मेरा बाबा, कितना मीठा आवाज। बस मेरा जो कह रहे हैं ना, उसकी कमाल, हर एक की दिल कह रही है मेरा बाबा। बाप की दिल हर एक बच्चे प्रीत कह रही है मेरा बच्चा।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जब सर्वशक्तिमान बाप साथ है तो सर्वशक्तिमान के आगे अब तो जाने जाने ना।

0: scalabriate, polviota, karambiwajat, tohe naket kulawa, tapito mayai, to sat kesewa. सर्वशक्तिवान साथ तो ये कमजोरी फिर कहां से आई? कहां से आई? कमजोरी रह सकती है कमजोरी नहीं ना, तो क्यों रह जाती? चाहे पवित्रता में कोई भी विकार हो, मानो लोभ है, लोभ सिर्फ खाने पीने का नहीं होता, कई समझते हैं हमारे में Yes.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अगर आपका व्यर्थ समय और संकल्प बच गया तो आपका दिन कैसे बीतेगा? खुश नसीब और खुश निमा बन जाए तो अभी संकल्प को अमृत वेले बाप दादा से मिलन मनाने के बाद एक मिनट पावर

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Annie.

Ciao.

बच्चों को

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सारे विरक्य की आत्माओं की आप पूर्वज आत्माओं की तरफ आकर्षण है। आप पूर्वज
4: See।

0: Jesse, पाप ने आप सभी बच्चों की भिन्न भिन्न शक्तियों से पालना की है, वैसे अभी
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Revise.

Legend.

have some

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कम से कम बाप दादा फिर भी मार्जिन देते कि इन 6 मास में जो बाप दादा ने से कम छह मास में अपने को जीवन मुक्त मुक्ति नहीं संगम युग की जीवन मुक्त स्टेज कोई भी विघ्न बदमाशी करेंगे क्या? करेंगे नहीं करेंगे ना। और ठीक कला की बासी करना और कोई बासी नहीं, कृति कला की बासी, बहाने बासी, कमजोरी की बासी, ये सब समाप्त।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: साधारण मैपन व रॉयल मैपन दोनों का समर्पण किया है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: संकल्प स्वरूप में सभी बैठो।

0: सता अपने को देखो, हिम्मत बढ़ाओ, कोई ना कोई ऐसी बात बुद्धि में रखो जिससे हिम्मत बढ़ती रहे। जितनी हिम्मत बढ़ेगी ना, तो हिम्मत के आगे और बातें आने भी कम हो जाएगी। तो अच्छा है कुछ सोचना।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कभी भी दिल छोटी नहीं करना, बड़ी दिल बड़ा बाबा, छोटा बाबा है क्या? बड़े दिल बड़ा बाबा है ना, तो बच्चों की दिल सदा बड़ी। बाप दादा का स्लोगन है, बड़ी दिल, सच्ची दिल, साफ दिल, हर मुराद हासिल। जो भी किचरा आवे ना, किचरे की दुनिया है ना, तो कभी वायुमंडल में किचरा उड़ के आ जाता है, लेकिन किचरा अपने पास नहीं रखो। जैसे इस दूर कमरे में सोते हो और किचरा हो जाए तो क्या होता है? सफाई नहीं करो, मच्छर होते हैं, बीमारियां होती है। तो ये भी अगर मन में कोई भी बात रख ली, निकाला नहीं, तो वो वृद्धि को पाती रहती। बस बाबा, मेरा बाबा, हाजिर बाबा बंधा हुआ है। बच्चा, बाप का बच्चा, भगवान का बच्चा, याद करे मेरा बाबा, और बाप हाजिर नहीं हो, ये हो नहीं सकता।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Awesome.

0: हर कलम आप ही बनेंगे, ये निश्चित है। बाप दादा सब चेहरे देख रहे हैं, ये वही कलम पहले वाले है। इस कलम के हो कि अनेक कलम के हो, अनेक कलम के हो ना, हो हाथ उठाओ जो हर कलम वाले है। अच्छा फिर तो निश्चित है ना, आपको तो पास सर्टिफिकेट मिल गया है ना, मिल गया है ना, कि लेना है, मिल गया है ना, मिल गया है कि लेना है। नहीं कलम पहले मिल गया है, अभी क्या नहीं मिलेगा, यही स्मृति स्वरूप बनो।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: एक बार बाप दादा इशारा देते कि चलते फिरते संगठन में भी रहते हो, कोई ना कोई साथ में सेवा में होता ही, तो एक दो को आत्मा के रूप में देखो। आत्मा के रूप में देखते भी है, अभ्यास भी करते हैं, लेकिन जब आत्मा देखते हो तो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से देखते हो, या जो मिक्स संस्कार है वो भी दिखाई देते हैं। आत्मा देखो इसमें पास हो, लेकिन किस संस्कार से देखते हो? क्या आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से कनेक्शन में आते हो कि वर्तमान संस्कार भी आते हैं सब? कहते हैं कि आज से किसी को भी एक तो आत्मा रूप में देखो, लेकिन आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार उस रूप में देखो। कभी भी आपस में जो कभी कभी बातें हो जाती है वो नहीं हो। अभी आत्मा रूप में देखते हो, लेकिन जो साथ में वो भी आ जाता है वर्तमान संस्कार, वो आपस में जो संपूर्ण स्थिति होनी चाहिए उसमें दूरी पड़ जाती। तो आत्मा ओरिजिनल संस्कार वाली आत्मा, तो ये जो अभी संगठन में रुकावट आती है वो रुकावट खत्म हो जाए।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बहुत अच्छी डर, बड़ी अच्छी लग रही है। इससे बहुत मदद मिले।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: समझती है कि बहुत जन्म के अलबेले पन के संस्कार पके है ना, तो हो जाता, लेकिन अभी अलबेले नहीं बन, नहीं तो फिर पीछे बताएंगे क्या होगा, अभी नहीं बताते, क्योंकि बाप दादा ने वर्तमान समय की रिजल्ट देखी सभी की, चाहे डबल फॉरेनर्स, चाहे भारतवासी, सभी बच्चों की रिजल्ट में देखा कि वर्तमान समय अलबेलेपन के बहुत नए नए प्रकार बच्चों में अनेक प्रकार के अलबेलापन, मन ही मन में सोच लेते हैं सब चलता है। आजकल का ये विशेष स्लोगन है, सब बातों में सब चलता है, ये अलबेलापन।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सब ठीक आराम से रहे हुए हो, मन भी आराम में, धन भी आराम में, दोनों ही आराम है ना? आप मुस्कुराओ, सीरियस नहीं रहो। अब तो सब मिल गया, बाकी क्या चाहिए? नाचो गाओ, मुस्कुराना अच्छा लगता है ना? ऐसे अच्छा नहीं,
2: चेहरे पर आता है मुस्कुराना।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: औरों की सेवा की बहुत बहुत बहुत बहुत आवश्यकता है, ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत नासिक समय आना है। ऐसे
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: पुरुषोत्तम संगम योगी

Mutant Ninja.

0: せ、されてべ、せかめ、いすてとおすて、いすかあんぱうかてろ。
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: एक वाणी, दूसरा स्वर, शक्तिशाली स्थिति और तीसरा श्रेष्ठ रूप।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: किसी

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम

Emerge. Rey. Joking.

Hela now combined. The chick.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सुनते रहिए
0: शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: इस वर्ष में बाप दादा विशेष एक शक्ति का वरदान भी दे रहे। मेरा बाबा कहेंगे तो शक्ति हाजिर दिल से। ऐसे ही मेरा बाबा ने दिल से कहा, अधिकार रखा मेरा बाबा, और शक्ति आपके आगे हाजिर हो जाएंगी। वो कौन सी शक्ति? परिवर्तन की शक्ति। परिवर्तन की शक्ति में विशेष नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर, नेगेटिव संकल्प, चलन को देखते हुए पॉजिटिव में चेंज करो। पॉजिटिव देखना, बोलना, करना सिर्फ शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा सहज हो जाए, क्योंकि ये अपोजिशन आएगी। लेकिन आपके परिवर्तन की शक्ति आप सहज सफलता दिलाएंगे। तो समझा, इस वर्ष का विशेष वरदान परिवर्तन शक्ति को दृढ़ संकल्प से कार्य सर्वशक्तिमान उसके आगे मुश्किल किया। लेकिन आप एक गलती करते हो और मुश्किल बना देते हो। जैसे देखो, अचानक या अंधकार हो जाता है। अगर कोई गलती से अंधकार को भगाने लगे तो अंधकार भागेगा। सही विधि है आप रोशनी का स्विच ऑन करो। चुप।

छोटी सी बात बड़ी कर देते हो और बड़ी बात तो मुश्किल होती है, छोटी बात कर लो तो सहज हो जाए।

0: तो सहज विधि कोई भी शक्ति को कार्य में लगाने की विधि बहुत सहज बताई है। अपन ने मास्टर सर्वशक्तिवान इस स्मृति के सीट पर बैठ जाओ। अगर इस सीट पर बैठेंगे तो अपसेट नहीं होंगे, बिना सीट के अपसेट होते। सीट है तो अपसेट नहीं होंगे।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कोई भी प्रमाण, चाहे सरेंडर है, चाहे सेवादारी है, चाहे

0: Senta, hermano. Lekin iski chot. Sankalap matra ki bhi chot. Bahut badi chot. Geet gaate ho na. Pavitra man rakho pavitra man.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आपके भगत और दुखी आत्माएं दोनों ही दया करो, कृपा करो,
2: fuck।

1 second.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: डबल फॉरेनर्स का फेवरेट शब्द है, बोलो कौन सा होगा? दो शब्द और है भी इंग्लिश, कंपेनियन और कंपनी। पसंद है डबल फॉरेनर्स? पसंद है ये दोनों? एक हाथ उठाओ अगर पसंद है तो, एक हाथ उठाओ। अच्छा, भारत वालों को पसंद है? पसंद है, पसंद। पीछे वालों को पसंद है? पसंद है। अच्छा, कंपेनियन भी जरूरी है और कंपनी भी जरूरी। कंपनी बिना भी नहीं रह सकते और कंपेनियन बिना भी नहीं रह सकते। कभी भी किनारा नहीं करता।

passada, hein, mano?

observas a Mandir. Jessa!

Radio Menela.

什么的。Casa me prete, sa me

सत्यों की तरफ What's up?

Reese.

0: Yes.
1: Yeah, make you need life.

Sat.

Devarse. Vascherirsi. Donobrgarsi. Tak widział.

见。

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बच्चे क्या करते हैं? कोई कोई सब नहीं, जो वरदान मिला उस

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बेचारे बच्चों का फर्श का

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज की दुनिया में मेजॉरिटी आत्माएं देखने और सुनने से थक गए, लेकिन सामना करने की शक्ति।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: दिमाग ताकते लगना, और दूसरा है दिल

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Let's see.

Let's see.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: Yeah.

kärringstorrejade.

0: Venga, सुनना प्रूफ खत्म हो
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: See?
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Titled there.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Mama.

suddenly

Okay.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: इसमें कोई कारण नहीं, समय नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता, तबीयत नहीं चलती, पूछा नहीं गया, ये कुछ नहीं, सब कर सकते। बच्चों ने खेल खेला था ना, दौड़ लगा देगा खेला था ना, अभी इसमें दौड़ लगाना, मनसा सेवा में दौड़ लगाना। अभी टीचर्स को मनसा सेवा में रेस करनी है, लेकिन ऐसे नहीं करना कि सारा दिन बैठ जाओ मैं मनसा सेवा कर रही हूँ।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सदा के लिए नहीं कर, दवाई खाएंगे। बीमारी फिर से आ जाती है। ऐसी दवाई दो जो बीमारी का नाम निशान नहीं हो, वो है मेडिटेशन।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

Sirako. Chahe mansa seva se, chahe vacha se, chahe manan shakti me busy rakho. Manan karo, manan shakti. एकाग्र बना देती। कोई कोई बच्चे मनन अच्छा करते भी हैं, लेकिन मनन शक्ति को भी सारे दिन में बढ़ा। लास्ट बच्चे से भी प्यार

0: Jacobin, Bob Dada, Jeyjayde, Xadjel, Red Ranger, Piche Piche, Nairedje.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Hey, buddy.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सबके अंदर खुशी का खजाना सदा ही चेहरे और चलन में दिखाई दे। खुशी अविनाशी पाप की देन, तो अविनाशी पाप की देन को अविनाशी रखो। खुशी के लिए कहा जाता है खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। तो जिसके अंदर सदा खुशी है उनके नैनों से, चेहरे से, चलन से ऑटोमेटिक दिखाई देती। बाप दादा का वरदान है कि सदा खुश रहो और सदा खुशी बांटो, क्योंकि खुशी बांटने से खुशी बढ़ेगी और कोई भी खजाना बांटने से कम होता है। लेकिन खुशी का खजाना जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो चेक करो, खुशी का खजाना सदा कायम है।
3: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: हर एक बच्चे को चाहिए, इंडिया में रहती है या फॉरेन में रहती, लेकिन वरदान सभी को
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Yes.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा बच्चों को कहते हैं सर्वशक्तियों का वर्षा, इतना शक्तिशाली है जो कोई भी समस्या आपके आगे ठहर नहीं सकती। समस्या मुक्त बन सकते हो सिर्फ सर्वशक्तियों को रूप में स्मृति में रखो और समय पर कार्य में लगाओ। इसके लिए अपने
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Madeline, what's your goal?

0: और परिवार को देख तो लिया। बाप दादा समझते हैं कि आप चाहिए
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

कुछ ना कुछ।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सेवा की भी आवश्यकता।

0: சீக்கிரம்
1: சோன் கல்யாணம்.

सेवा को बढ़ाओ।

Цим сяде до кога. Усаме. Сами. Ка аденчен. Усаханчен.

Ich

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सेवा के साथी पाप तो सकाश देने वाले हैं, लेकिन साथी कौन? साकार का साथ तो परिवार का है। तो पाप ने देखा है कि तीन निश्चय में मेजॉरिटी ठीक चल रही है, लेकिन परिवार के साथ में निभाना, संस्कार मिलाना, एक एक को कल्याण के भावना से देखना और चलना, इसमें कई बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं। लेकिन बाप ने देखा कि जो परिवार के निश्चय में नॉलेजफुल होगे, सदा बाप समान साखी बन के स्थिति में साथ में आते हैं, रहते हैं। वही नंबर वन या नंबर वन डिवीजन में आता है। तो चेक करो, भाव स्वभाव परिवार में होते हैं। जो भी छोटी छोटी गलतियां होती है, विघ्न आते हैं, वो परिवार के संबंध में ही आते हैं। तो सबसे आवश्यक इस परिवार के संबंध में पास होना आवश्यक है। अगर परिवार में चलने में, तोड़ने बाने में कोई भी कमी होती है, तो वो विघ्न छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन तंग करता है। ये क्यों, ये कैसे परिवार के कनेक्शन में आता है? तो क्यों के बजाय क्यों नहीं करना है, लेकिन हमें मिलकर चलना है, परिवार की प्रीत निभानी। क्यों कि ये बाप का परिवार है, भगवान का परिवार, रवासी परिवार नहीं। नशा रहना चाहिए कि वाह बाबा, वाह ड्रामा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: देखा है कि क्रोध के सब्जेक्ट में बहुत कम पास ऐसी समझती है, शायद क्रोध कोई विकार नहीं है, ये शस्त्र है, विकार नहीं। लेकिन क्रोध क्या नहीं तो आत्मा के लिए स्वरूप ईर्ष्या द्वेष घृणा अंदर में होती है, उसके स्वरूप में बाहर से जोर से बोलना या बाहर से रूप नहीं दिखाई देता है, लेकिन अंदर में जैसे बाहर क्रोध होता है तो अगर रूप है ना, क्रोध चलता रहता है अंदर खुद भी और दूसरे को भी चलाता है। ऐसे ईर्ष्या द्वेष घृणा जिसमें अंदर है वो अंदर इस अग्नि में जलता रहता है, बाहर से लाल पीला नहीं होता लेकिन अंदर भी ठीक है, लेकिन वो

0: रूपी है, वो चतुराई का रूप है, क्रोध के चतुराई का रूप है। वो क्या है? कहने में, समझने में, ऐसे समझती है, वाह कहती है कि कहां कहां सीरियस होना ही पड़ता है, कहां कहां ला उठाना ही पड़ता है कल्याण के लिए। अभी कल्याण है या नहीं वो अपने से पूछो।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जब कंबाइंड है सर्वशक्तिवान बाप दादा, कंबाइंड है फिर अकेले क्यों बन जाते अगर आप कमजोर भी हो तो बाप दादा तो सर्वशक्ति

0: और समय सहयोगी शिव बाप परम धाम से आए क्यों है, किस लिए आए? बच्चों के सहयोगी बनने के लिए आए। देखो ब्रह्मा बाप भी
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: नहीं मिले तो भी आपके चेहरे

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा, ये रायल रूफ के मैमे के गीत बहुत सुनते हैं। मैंने जो किया वो ही ठीक है, मैंने जो सोचा वो ही ठीक है, वो ही होना चाहिए। Vale.

0: hebat. Balik pun. Jim balik. Or balik. Yerwani drill. Bot, bot, avşak. Sırf bab tata ki. Tid şabd sikya ki yad rakho. Sab ko yad hai.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी बहुत आप लोगों का काम पड़ना है, ये नहीं सेवा कर ली, भाषण कर लिया, फर्क को चला लिया, नहीं बहुत सेवा रही हुई है। अभी तो मनसा द्वारा सकाश देने का काम करना है, जैसे शुरू शुरू में शिव ब्रह्मा में प्रवेश हुआ तो घर बैठे कैसे सकाश दी, किसको साक्षात्कार हुआ, किसको आवाज आया फलाने स्थान पर जाओ, किस पर प्रेरणा आई सुन करके मुझे जाना ही है, बाकी आई ना। और जो शुरू में आई वो कितने बाकी है, याद करते हो ना दादी को, दूसरी भी दादियों को याद करते हो ना, तो जो शुरू में हुआ वो अभी अंत में भी रिपीट होना है, इसलिए अपने मनसा शक्ति को, मनसा सेवा को बढ़ाओ। उस समय भाषण आपका कोई नहीं सुनेगा, कोर्स कोई नहीं करेगा, हालत ही गंभीर होगी। मनसा सकाश देने का सेवा करनी पड़ेगी, इसीलिए अभी अभ्यास करो। अमृत वेले सिर्फ नहीं, भले कर्म कर रहे हो लेकिन बीच बीच में माइंड को कंट्रोल करके सब तरफ से एकाग्र हो करके सकाश दे सकता हो या नहीं दे सकता हो इसकी ट्रायल करो, बहुत आवश्यकता होगी। आकर तो करता सुख करता आपके चित्र भी बनते हैं, तो क्या चेतन में नहीं बनेंगे, अंतर्मुखी होके बीच बीच मिनट निकालो। अमृत वेला सिर्फ नहीं है, दिन रात ये अभ्यास चाहिए। रात को आंख खुलती है ट्रेल करो, फिर जाके भले सो जाओ लेकिन थोड़ा टाइम ट्रेल करो। और काम के लिए भी तो उठते हो ना, तो ये अभ्यास भी करो, तभी आपकी पूजा होगी, नहीं तो आपकी पूजा नाम मात्र होगी। बड़े बड़े मंदिर नहीं बनेंगे, चालू मंदिर।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज चारों

se sent braços a mà. Sa

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। बांधने वाले ने सिर्फ तरीका आपको सुना दिया कि ऐसे बांधो तो बन जाऊंगा। अच्छा
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Son.

Sss.

Sucks.

обещание. Sarva Casano.

Yeah.

Mississippi, God help me. Yes.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: नसीब खुश दिमाग बातें का काम है आना, ये भी समझ लो बातें नहीं आएगी, बातें आएंगी लेकिन अपना लक्ष्य में लाना है, घबराना नहीं। तो जैसे जैसे पवित्र बनना असंभव समझते थे लेकिन अभी आप सबके अनुभव के आधार से समझते हैं कि हो सकता है ऐसे अभी इस वर्ष ये लहर फैलाओ कि क्रोध जीत बनना हो सकता मुश्किल नहीं है। ऐसा एग्जाम्पल के अनुभव प्रैक्टिकल में स्टेज पर लाओ।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: संगम योग के बाप दादा के कार्य की विशेषता या नवीनता बातें और अभी माताओं की विशेषता आगे आगे जैसे बाप दादा के आगे बढ़ रही है, ऐसे ही गवर्नमेंट में या आज की दुनिया में माताओं की तरफ सभी की नजर। इसलिए ये प्रोग्राम धाम धूम से करो, माताओं को ऐसा आगे बढ़ाओ जो सब देखे कि माताओं की शक्ति, माताओं की पालना कितने ऊंची है। अभी बाप दादा माताएं परिवार में रहते अपने बच्चों का ऐसा सैंपल बनाओ जो किसी को भी बाप दादा सैंपल दिखाए कि घर आश्रम कैसे बना, बच्चे कैसे अपने मर्यादाओं में रहते। ये जो इम्प्रेशन है कि बच्चे बदल जाए, ये गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है। वो माताएं ऐसा प्रैक्टिकल करके दिखाओ जो गवर्नमेंट सोचे कि ये माताएं बच्चों का कल्याण भी कर सकते। जो भी स्वयं बने हैं वो बच्चों को ऐसे तैयार करे जो गवर्नमेंट को देखने में आवे कि ये क्या कमाल कर सकते। अच्छा,
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: पवित्रता ही मानता है, पवित्रता ही योगी जीवन का आधार। कभी कभी बच्चे अनुभव करते हैं कि अगर चलते चलते मनसा में भी अपवित्रता अर्थात वेस्ट वन नेगेटिव भारत चिंतन के संकल्प चलते हैं, तो कितना भी योग पावरफुल चाहते हैं होता है क्यों? शराब भी अंश वैसे नहीं आस जैसे दिन और रात इकट्ठा नहीं होता, इसीलिए बाप दादा वर्तमान समय पवित्र